एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वधिया वाधाइया राग रतन।

नेत नेत रख उतारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई गुरजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अमृतसर साहब वाले जिन्हां ने आप संगत नूं गुरबाणी कीर्तन आरती आरता सुना करके निहाल कीता है। सतगुरु महाराज चढ़दी कला की दात बख्शिश करन। हुण बहुत ही सत्कार योग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल आप संगत नूं गुर त्याग की कथा विचार द्वारा निहाल करनगे। गुरु घर विखे सात संगत जी कल रोज तो इस हफ्ते के इतिहासक दिहाड़िया समर्पित दो श्री अखंड पाठ साहिब बहाल नंबर 3 विच आरंभ होए हन, जिन्हां दे भोग कल पाए जाणगे, उपरंत विशेष दीवान सजणगे। सात संगत जीओ जो 3 मई तो गुरु घर विखे पाठ बोध समागम प्रारंभ होए हन, 30 अगस्त नूं भोग पैण जा रहे हन। सो संपूर्णता दे उपर जो विशेष समागम गुरु घर विखे उलीके गए हन, महापुरुष दमदमी टकसाल दे 12वें मुखी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरांवाले, दमदमी टकसाल दे 13वें जथेदार संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरांवाले, उन्हां दी बरसी नूं निमित साध संगत जी विशेष समागम ने। ज्ञानी दलजीत सिंह जी दमदमी टकसाल USA वाले 24 तरीक तो 30 तरीक तक शाम नूं कथा विचार की हाजरी भरनगे। भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी रोजाना 25 तरीक तो 30 अगस्त तक शाम 8 बजे तो लैके 9 बजे तक कीर्तन की हाजरी भरनगे। 29 तरीक न शनिचरवार सवेरे 5:30 बजे नाम सिमरन की हाजरी भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी भरनगे। 30 अगस्त न शाम 4 बजे तो लैके 9:30 बजे तक संपूर्णता के समागम होणगे। विशेष तौर उपर पंथ के महान विद्वान शख्सियत इस संपूर्णता समागम ते पहुँच रही ने। आप संगतां दे चरणां विच बेनती वध तों वध हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने जी। कल सात संगत जीओ दिन एतवार नूं 1 बजे गुरु घर दी पार्क दे विच समूह शहीदां दी याद नूं समर्पित परिवारक खेड मेला जो हर साल ही कराया जांदा है। सो संगत नूं बेनती है कल 1 बजे आप परिवारां समेत जरूर शमूलियत करन दी कृपालता करो। आओ हुण कथा विचार नाल जुड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
0: गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पगबंद रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोविंद हरी राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद 10वें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरबिंद जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिनो जीते पंच बिकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच हो वाहिगुरु जी की फतेह है। बिघ्न विनाशन सोए कथा

मानमुख बोध काची मनुआ डोले आकाथ न कथया कहानी गुरमत निहचल हार मन वसिया अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सहज सुभाई

संगे घट घट कथा राजन की चल कर कर तुझे उमाह जी जंत सब पाछे करिया प्रथमे रिजक समाहा जो किश करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी अनेक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपने दीनी नाम वडाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तैं दिए रुड़ाई मुक्त पए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिन कौ देख पए किरपाला तिन भव सागर तरिया।

0: कनिक सुमेर अनिक सेख नवतन नाम लेहे पार ब्रह्म का अंत न तेहे अनिक पुरिया अनिक तह खंड अनिक रूप रंग ब्रह्मंड अनिक बना अनिक फल मूल
1: रंग ते विश्राम
0: अनेक रूप रंग ब्रह्मंड।

अनेक परलव अनेक अनेक उपात अनेक जी जाके गृह माहे रमत राम पूर्ण सर्ब ठाए अनेक माया जाकी लखी ना जाए अनेक कला खेले हर राय अनेक तुनित

नाक वड्डे नाक वडाया महाकुरूप दुखिए सदा काले मोह माया पल के उठ नित पर दर्ब हिर है।

0: ज्ञान ध्यान इस नाल दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान।
1: दया देवता इथे जमक जिदा ग्यानी जी ने लाई है, दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान, जिन्हां दे कोल दया रूपी देवता ते खिमा करन रूप माला है ओ मानस प्रधान हन। हांजी।

0: कहया बुझ ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद न ना बेद न गीय रास रास कास ना जानंत एक ना शुद्ध न बुद्ध न अकल सार अखर का पेयो न लहंत नानक से नर असल खार जे बेन गुण गर्भ करंत
1: नानक से नर असल खार जे बेन गुण गर्भ गर्भ करंत गर्भ पाठ करना है थे गर्भ नहीं कहना पिछे ज्ञानी जी ने गर्भ पाठ एक उच्चारण करके आए हन गर्भ दा अर्थ हुंदा है पेट उधर गर्भ दा अर्थ है अहंकार महाराज बख्शिश कर दे कहिंदे नानक से नर असल ओ असली मूर्ख हन खरना गधे दा भी हुंदा खोते दा भी मूर्ख दा भी हुंदा जे बेन गुण गर्भ करंत ओ असल गधियां दी न्याई हन जेडे बिना गुणा तो भी अहंकार करी जांदे हन
0: पावड़ी गुरमुख साहब।

साध ही उचारण करना, साध नहीं निकलना चाहिदा। साध दा अर्थ साधु ते साध दा अर्थ स्वाद। शब्द है साध ना आवई नाम ना लगे प्यार। जिन्ना चिर शब्द चो रस ना आउण लगा उन्ना चिर नाम दे नाल प्यार नहीं पवेगा। गुरबाणी दे नाल साध संगत जी रस लैण दी जिन्ना चिर आदत ना पई, जदों गुरबाणी नूं पढ़दिआं पढ़दिआं रस आउण लग गया फिर साध संगत जी नाम दे विच प्यार भी साडा पै जावेगा। धक्के दे नाल नाम दे विच मन लाउण नूं फिरदे आं, शब्द दे विच सुरती नूं जोड़दे नहीं, ते ओह जुगतियां उगतियां जिहियां वरती जांदे आं, कदी चक के इधर नूं साह चढ़ा लैंदे आं, कदी उधर नूं, कदी इतरां जोर मारदे आं, कई जुगतियां जगतियां जिहियां ला के नाम नूं अंदर पैदा करन दा यतन करदे हां। परंतु सचे पातशाह महाराज कहिंदे जिन्ना चिर शब्द दा रस, शब्द तो भाव गुरबाणी गुरु के शब्द दी द्वारा गुरु दे दिते उपदेश दा रस ना आउण लगा, जो गुर कहे सोई भल मानो वाली बिरती ना अंदर बनी। जिचर एहो मन लहरी विच है, जदों तक साडा मन कदी इधर भजदा है दी इधर लहरां जिवें विच समुंदर दीआं तरंगां इधर उधर उतां ठां इधर उधर जांदीआं, जदों तक मन इदां लहरां दे विच है उदों तक महाराज कहिंदे होमै बहुत अहंकार, मन अहंकार दे विच है। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੇਵਲ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ।

ही करना पोला ही आपत ना कीता जावे। आपत दा भाव है अपना भाव, अपने अंदरों होमे आपे बख्शे मेल लए इथे विश्राम। आपत गवावे अपना आप गवा लवे।

अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया, जिन पूर्व लिखिया कराम पावड़ी, लेखा पढ़िया हर नाम, फिर लेख ना होई पूछ ना सकै कोई, हार दर सद ढोई, जमकाल मिलै दे भेट, सेवक

सारंग पानी राम कबीरा एक बे है कोई न सके पछाने। हुण इत्थे प्रश्न खड़ा हुंदा है, अगर जीवन रोग है ते मन सोग है तन रोग है तो फिर की करिए। रोग दे च जीवी है, सोग दे च जीवी है, इस तो छुटकारा हो सकदा है। बस धार्मिक ज्ञान ते जगत दे ज्ञान दे च यही अंतर है। फ्रायड जैसा दार्शनिक कहिंदा है, काम देश ते जीवना ही पएगा, हंकार देश ते जीवना ही पएगा, लोभ देश ते जीवना ही पएगा। ये मनुख दी शक्ति है और अपनी शक्ति नाल लड़के मनुख बच नहीं सकदा। ये एक महान ताकत है। लोभ इस कोल कुछ करवाना चाहता है, हंकार इस कोल बहुत कुछ करवावेगा, काम भी इस कोल बहुत कुछ करवावेगा। इस देश ते जीवना पएगा। बस भारत दा मनीष कहिंदा नहीं, इस तों बचिया जा सकदा है, इस तों उच्चा उठिया जा सकदा है। करीबन करीबन पछमी विद्वान ऐसा कहिंदे ने कि भारत दे मनीष बहुते कल्पनावां विच ने, कल्पनावां विच ने। कि भारत दी मनीष दी भाषा जे बोलिए ते कह सकदे आ पछमी विद्वान किसे हद तक भुलेखे देचने, अज्ञान देचने, ना समझी देचने, दानिशमंदी नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। ओ ते कह रहे ने ए भारत दे मनीष कल्पना दी दुनिया दे जी रहे ने, कल्पना दी दुनिया जी रहे ने। पर कौन इना नु दसे? कहंदे ने उस दी ते कल्पना भी नहीं कीती जा सकदी जो है नहीं, जो है नहीं। अगर प्यास है तो पानी जरूर है, भूख है तो भोजन जरूर है। जीवन दे परम सुख दी जे प्यास है तो परम सुख है, परम सुख है। परम आनंद दी जे तड़प है तो फिर परम आनंद है। ओ कहिंदे ने टोल टोल के खोज खोज के ऐसा देखिया, धन मिलिया, संपदा मिली है, होर तरह तरह दे पदार्थां दे अंबार लगे ने, सुखते नहीं मिलिया, किधरे भी नहीं मिलिया। अधूरी सच्चाई ते उन्होंने भी कबूल, हुण ते मेडिकल साइंस भी कह रही है कि 60% बीमारियां साडे काबू विच नहीं ने, नहीं ने। मानसिक रोग विच जीवना बस यही मनुख दी जिंदगी है, और कुछ भी नहीं है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने नहीं, एक परम जीवन है, ऐसा जीवन जेदे च जन्म दा दुख नहीं है, जेदे च मरण दा दुख नहीं है, और जिस दे च तीजा दुख बुढ़ेपे दा रोग भी नहीं है। कुछ ना समझ ऐसा कहंदे ने कि क्यों मनी है, जीवन दुख है, शरीर रोग है। चंगे भले कई स्वास्थ्य शरीर दिखाई देंदे ने, गुरवाणी नहीं मनदी। अगर स्वास्थ्य दिखाई देंदे ने तो एक दिन बुढ़ा किस तरह हो जांदा है? आखिर बुढ़े होण दा बीज तेज दे अंदर पे है, ते जिहड़ा बीज इस नूं बुढ़ा कर सकदा है उहनूं रोग कहा जाएगा, होर की आख्या जाएगा। जिहड़े स्वास्थ्य दिखाई देंदे ने वास्तविक उहनां दीआं थोड़ी जिहियां बीमारियां सीमा विच ने, या औषधियां खा के रोग नूं सीमा विच कर लैंदा है ताकि पीड़ा महसूस ना होवे, रोग ते खत्म नहीं होए। अगर रोग खत्म हो गए ने तो फिर बुढ़ा किस तरह हो सकदा है? फिर बुढ़ेपा तो एक ऐसा रोग है, इसनूं सीमित करना भी बड़ा औखा है, कठिन है। ये तो वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। भारत दे सारे संत कहंदे ने बुढ़ेपा स्वयं अपने आप विच एक रोग है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसे नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। मन विच वासना बड़ी प्रबल है, चलिए पर चलन दी समर्था पैरां विच नहीं है। मन विच बड़ी प्रबल वासना है पदार्थां नूं भोगण दी, इंद्रियां दी सत्या है नहीं। कहिंदे ने
ਇੱਕ ਜਵਾਨ

हों मैं रोग मानक को दीना, काम रोग मैं गलवस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musia, baby. Yeah. Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।

कारोबार छड़ दे किरत छड़ दे घर बार दे बंधन छड़ दे फिर मेरे को आ तां तेरे बंधन कटांगा। दोबारा सुने एक जोगी को गया उन्हों मैं हो गया भी किवें बंधन कटे जा वो कहिंदा किरत छड़ दे कारोबार छड़ दे घर बार छड़ दे ऐ बंधन तू छड़ तेरे बंधन मैं कटा। कहिंदे जी हुण तुहाडे कोल आए मेरा दिल करदा हाथी कमा के खाव दर दर दे उत्ते जोगियां वांग मंगण ते चित नहीं करदा मेरा दिल करदा कमा के खाव जे ते घर विच किरत करदिया गुरु नानक दे घर च रस्ता हैगा गति दा जन्म मरण कटण दा फिर ठीक है जे नहीं हैगा ते फिर मैं कोड़ा घुट भरां सारा कुछ छड्डण दा गज के आखो साहिब जोगी ने कहा सब कुछ छड्ड फिर मैं तेरे बंदन

गुरु अंगद साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, आज सिखी महाराज कहते जोगी ने किया किरत छड़ दे, घर बार छड़ दे, बंधन छड़ फिर बंधन कटांगे। महाराज कहते जे सारा संसार ही किरत छड़ दे ते अन्न कित्थों आएगा, कणक कित्थों आएगी। कणक कौन वड्डेगा, आटा किवें पीएगा, जगत किवें चलेगा। ये ते संसार विच लोग किरत करदे ने, ते जोगी दे खप्पड़ विच फेर कुछ पैंदा। कह दो गल के सर लोग किरत ही ना करन संसार किवें चले। बड़ी वड्डी गल कही गुरु अंगद देव जी ने, भाई वीर सिंह ने लिखी जे सटेज बैठे मुंडे भी जरूर सुनन, भैणा भी सुनन जिन्हें।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दियन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटे जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: देव राष्ट्रपति
1: दे प्रसाद छत्ति ही अमृत खाहे
0: जिस ठाकुर को रख मन माहे
1: दे प्रसाद सुगंध तन लावहे
0: जिसको सिमृत परमगत पावे
1: दे प्रसाद बसे सुख मंदर
0: जिसते आय सदा मन अंदर
1: दे प्रसाद गृह संग सुख बसना
0: आठ पहर सिमरो तसरसना
1: दे प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ते आइए ते हमन जोग
1: दे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहे
0: जिसते त्यागत अवर लुभावे
1: दे प्रसाद सुख सेज सोई जय
0: मन आठ पहर ताका जस गावी जय
1: दे प्रसाद तुल सब को मान
0: मुक्ता को जस रसन बखान
1: प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
1: रब जी जपत दरगाह मान पावे
0: नानक पत से ती कर जावे
1: दे प्रसाद अरो कंचन देही
0: निबला बोत सराम स्नेही
1: दे प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: दे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
1: दे प्रसाद तुझ को न पहुंचे
0: मन साह साह सिमरो प्रभु उच्चे
1: दे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
0: नानक ताकी भगत करे
1: दे प्रसाद अपूखन पहरी जय
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय
1: दे प्रसाद असवर सवारी
0: मन तिस प्रभु को कभु न बिसारी
1: दे प्रसाद बाग मिलक तना
0: राग प्रय प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत्य सह ध्याई
1: इसे ध्याई जो एक लख है
0: यहाँ उहा नानक तेरी रख है
1: दे प्रसाद करहे पुन बहुदान
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: दे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: इस प्रभु को सास सास तारी
1: दे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: प्रभु सिमरो सदा अनूप
1: दे प्रसाद तेरी नीति जात
0: प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: दे प्रसाद तेरी पत रहे
0: गुर प्रसाद नानक जस कह
1: दे प्रसाद सुनहे करण नाद
0: हे प्रसाद पेखे विस्माद
1: हे प्रसाद बोले हैं अमृत रसना
0: हे प्रसाद सुख सहजे बसना
1: हे प्रसाद हस्तकर चल है
0: हे प्रसाद संपूर्ण फल है
1: हे प्रसाद परम गत पावहे
0: हे प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग बरकत लग हो
0: गुर प्रसाद नानक मन जग
1: हे प्रसाद तू प्रकट संसार
0: इस प्रभु को मूल न मनो विसार
1: हे प्रसाद तेरा प्रताप
0: हे मन मूड तू ताको जाप
1: हे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
0: जिसे जान मन सदा हजूरे
1: हे प्रसाद तू पावे साच
0: हे मन मेरे तू ता स्यो राज
1: हे प्रसाद सबकी गत हो
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप जपाई जपे सो नाओ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु कृपा ते होए प्रकाश
0: प्रभु दया ते कमल विकास
1: सब सो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दया ते मत उत्तम होए
1: सर्व निधान प्रभु तेरी माया
0: आपो कछु न किन्हु लया
1: जब जत लाभ हो तित लगे हर नाथ
0: नानक हिन के कछु न हाथ श्लोक
1: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह समुखता होए
0: सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा राष्ट्रपति
1: साध का संग मुख उजल होत
0: साध संग मन सगली खोत
1: साध का संग मिटे अभिमान
0: साध का संग प्रकट है सुज्ञान
1: साध का संग बुझे प्रभ नीरा
0: साध संग सब होत नबेरा
1: साध का संग पाए नाम रतन
0: साध का संग एको ऊपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी
0: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी
1: साध का संग अगोचर मिले
0: साध का संग सदा प्रफुल्ल
1: साध का संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध का संग मनोहर बैन
1: साध का संग न कथू पावे
0: साध संग अस्तित्व मन पावे
1: साध के संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग महापुनीत
1: साध संग किस्यो नी बैर
0: साध के संग न बीगा पैर
1: साध के संग नाही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नाही हो ताप
0: साध के संग तो जैसा व्याप
1: आपे जाने साध पढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कभ हूं पावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह
0: साधु के संग अजर सह
1: साध के संग बस है थान ऊंचे
0: साधु के संग महर पहुंचे
1: साध का संग दृढ़ है सब धर्म
0: साध का संग केवल पार ब्रह्म
1: साध का संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साध का संग सब कुल उधार है
0: साध संग साधन मीत कुटम निस्तार है
1: साधु का संग सो धन पावे
0: जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध का संग शोभा सुर देवा
1: साधु का संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध का संग सर्प थान गम
0: नानक साध का संग सगल जनम
1: साध का संग नहीं कष काल
0: दर्शन भेटत होत नहाल
1: साध का संग कुलूखत हरै
0: साध का संग नरक पर हरै
1: साध का संग इहां उहां सुरेला
0: साध संग विश्रत हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म साध रित बसे
0: नानक कुदरे साध सुन रसै
1: साध के संग सुनो हर नाउ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मन ते बिसरै
0: साध संग सर पर निस्तरै
1: साध के संग लगे प्रभु मीठा
0: साधु के संग करकट दीठा
1: साध संग भय आज्ञाकारी
0: साध संगत भय हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध भेटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जान है
0: जिता सुन तिता बखियाने
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर
0: साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत
0: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
0: साध की शोभा मूचते मूची
1: साध की शोभा साध बनाई
0: नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे
0: कस बिन कोए
1: नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए
0: अष्टपदी।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमल लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यों बसदा को खुदै को चिंदन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यों भावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जिन प्रभु आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भय
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी दे तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबर जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी अपनकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और धारै जो अंतर नाम सर्व में देखै भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्या रूप न देखै नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्णन सुनै काहू की निंदा
0: सत्य जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद विथिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टरै
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: जिसन की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वै ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचै
0: केवल भगत कीर्तन संग रचै
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावै
0: नानको वैष्णो परम गत पावै
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन ते बिनसै सगला भरम
0: कर पूजै सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवै
0: इस भगवती की मत उत्तम होवै
1: भगवंत की टहल करै नित नीत
0: मन तन अर्पै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावै
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुधै
1: राम नाम सार रस पीवै
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवै
1: हर की कथा हृदय बसावै
0: सो पंडित फिर जोन न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझै मूल
0: सुख मैं जानै स्थूल
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना मैं जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साध संग पावै जन कोय
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: ज्ञान रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगाह परवान
1: अपने दास को आप कृपा करै
0: जिस दास को सब सोजी परै
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावै
1: ऐसा हरख तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नाही वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिखाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताए साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित जित घर रखे तैसा तन्ना
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई पन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखन जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विधि अनेक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट पै तीर्थवासी
0: कई कोट

नम जंत्र जंत्रंग नम इष्ट इष्ट नम तंत्र तंत्रंग सदा सचदा नंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तोल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा ब्रद करता अदो अर्ध अदो उर्ध अर्धंग अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वरंग प्रोच्छ पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अछेदी अभेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है पीत है पे है प्रभु है जू है देश है पेस है पुजंग प्रयात छंद अगाध अबाध आनंदी स्वरूप नमो सर्वमाने समस्ते निदाने नमस्तवंग नरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीज अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चरपट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अख

चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पर थी से अधिश अदृश अक्र स भगवती छंद परसाद कथते

के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सत के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र धाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के आकल आलाम है के साहेब कलाम है के हुसन अल वजू है तमाम अल रुजू है हमेशा सलाम है सलीख तमोदाम है गनीमोल सकास्ता।

सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तोल सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, अवंगाध रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध अगंज अगाध शुभंग सर्वभाग्य सो सर्वानुराग त्रिभूत स्वरूप है, अच्छे जय अछूत है, कनरकं प्रणा

सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं योगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत परसाद नमो नरक नाश सदैव प्रकाश अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमार्थं परमाथे सदा सर्वसाथ अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सोतर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजाय बेपूते गजाय बगनी में हरियंग करियंग करिमल रही मैं चतर चक्रवर्ती चतर चक्र

जति के सूर सुर अर्दन सुध सुधाधक संत समूह अनेक मती के सार ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूप तंत को नंग ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गना नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु,

करण कारण पतित पावन भगत वश्यल कृपा निदान जागत जोत चवर शतर और तख्त के मालक जैसी में आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए सच्ची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तिस मोख द्वार रतना रतन पदार्थ बो सागर भरिया राम बाणी गोर बाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम ऐसे दीन दयाल अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा जी दी निरंजनी जोत सरगुण स्वरूप दसां गुणा की आत्मक जोत तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां ने अपार अपार कृपा कीती है अमृत वेले दियां अमृत पवित्र दातां नाल गुरसिख संगतां नूं निवाजिया है अमृत वेले अपने सोहणे दरबार दे विच सच्चे पातशाह जी ने प्रकाशमान हो के पवित्र दर्शन अलाही हुक्म और नितनेम दीआं दातां बख्शीआं हन अपने हजूर दी सेवा सच्चे पातशाह जी महाराज ने तरस करके अपने चरण सेवक सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी मनदीप सिंह जी तिन्हां नूं बख्शिश कीती है सिमरन उपरंत श्री आसा जी की वार दा कीर्तन आपने बच्चियां दे पासों श्रवण कीता है और गुरु महाराज दे चरणां सरबत दे भले दी अरदास गुरु महाराज जी ने संगतां नूं अलाही फरमान दे नाल निहाल कीता है। कोई समां गुर शब्द दी विचार आए हुए मुख वाक दी विचार सच्चे पातशाह कृपा करन ज्यों बुलाए त्यों बोलीए या आ बुलाए सोए ज्यों बुलाए त्यों बोलीए कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी सच्चे पातशाह मेहर करन रसना करांगे पवित्र प्यार नाल बोलीए जी सतनाम।

0: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। अवतारी पुरुषानु सुते सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलते ने जिन्हों तखल्लुस कहते ने, कोई खासियत देख के कोई अहमियत देख के उन्हानु नाम दिता जांदा है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बजी हुई देख के जगत दे मुंह निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है तमाशा है, जन्म नफा भी खेल नुकसान भी खेल, जवानी भी खेल बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया जानिया और जीविया, देशवासियों ने उसनु कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस कीता अनुभव कीता जगत दुख है, जगत रोग है, जगत मिथे है, जगत ते वगदे हुए हंजू ने, जगत ते एक पीड़ा है एक वेदना है जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहन लगा जगत एक पीड़ा है एक दुख है एक रोग है और उस रोग दा समाधान लेके उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नु स्वस्थ करदा रहा समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया है जो रोगियां लई वैद है, इसते कुल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नु समझना होवेगा जगत एक पीड़ा है तो जगत तो मुराद की लिए मनुख, मनुख स्वयं एक पीड़ा है, मनुख ही समस्या है। ये नहीं कि मनुख दिया समस्या माने, नहीं मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दिया वेदनावां ने मनुख दे दुख ने, ऐसा नहीं मनुख खुद ही एक दुख है, मनुख खुद ही एक पीड़ा है, मनुख खुद ही एक वेदना है। जद मनुख है तो पीड़ा है, मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इस दी शुरुआत इंज कर देने जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देंदा। जन्म भी पीड़ा है, जीवन भी पीड़ा है, मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखानु जन्म सुख है जीवन सुख है, सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्म दिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है, जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है, मौत पीड़ा है इसनु भुलाना है, मौत वेदना है इसनु गलत करना है। मौत ही दुख है ए चेते ना होए। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए, कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए, जीवदे जागदे मनुख दिखाई देन कब्रिस्तान ना दिखाई देन, हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन जल्दियों या लाशां ना दिखाई देन। और घर विच कोई मृत्यु हो गई है तो कोशिश कीती जांदी है सारियां दे अंतिश करन विच मौत बैठ जाए उस तो पहले इस नूं घरों कढ़ो, इस तो पहलो कढ़ो, जला के खाक कर दो। जीवन चेते रहे, जन्म चेते रहे, मरण भुलाओ भुलाओ। ये पहला अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते आया जिसने मनुखता दे सामने बुलंद बांग होके कहा, जन्म दुख है। शायद तुसी सारे दुख दा ही जन्मदिन मना रहे हो और दुख दे जन्म दी खुशियां मनांदे हो या नच रहे हो, टप रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है। मनुख नु दुख दी भी समझ नहीं। अगर दुख दी समझ आउंदी तो शायद उसनु ये समझ आ जांदी जन्म दुख है, जन्म दुख है। जन्म दा बोध नहीं है इस वास्ते दुख दा बोध नहीं है, दुख दा बोध नहीं है इस वास्ते जन्म दा बोध नहीं है। जीवन दी लालसा है, दुख दा ज्ञान नहीं है इस वास्ते कह सकते हैं जीवन दा भी ज्ञान नहीं। और धार्मिक दार्शनिक ऐसा कहंदे ने, जो मेरी समझ दे च नहीं ओ नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे ते नहीं है। होवेगा परमात्मा, होवेगा किधरे सुख, होवेगा दुख, होवेगा कलेश, पर मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जैसे पत्थर दी दुनिया च कोई कलेश नहीं है, कोई सुख नहीं है, ना सुख दा बोध ना दुख दा बोध, ना दिन दा ज्ञान ना रात दा ज्ञान, ना सर्दी महसूस होंदी है ना गर्मी महसूस होंदी है। पत्थर ही सिर्फ पत्थर नहीं, बहुते दिल बहुते दिमाग मनुखां दे पत्थर ही ने, बिल्कुल पत्थर नहीं। अगर दुख दा बोध नहीं है और वाकई नहीं है, और सुख दा ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है, तो इस दिल नु क्या कहिए, इस दिमाग नु क्या आखिए, इते पत्थर है। जो मेरी समझ देश नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया देखते नहीं है, क्योंकि मैनू उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज दी मैनू समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया। अगर परमात्मा भी मेरी समझ देश नहीं है तो कम से कम मेरी दुनिया दे परमात्मा नहीं है, भावे होवे भावे जगत दे है पर मेरी दुनिया दे नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुती मनुखता तो बिना जी रही है और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, या इंज कह लिए बहुती मनुखता परमात्मा दे होंदया होया परमात्मा तो बिना जी रही है, जैसे अंधा सूरज दे होंदे होया सूरज तो बिना जीवंदा। रोशनी ते चारों पासे फैली हुई है, प्रकाश ते डुल डुल के पै रहा है, पर अंधा इतने प्रकाश दे होंदे होया प्रकाश तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदे होया बहुती मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए। समझ दी दुनिया आरंभ हो गई, समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे है। केड़ी समझ? जो मेरी समझ देश नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ देश नहीं, जो मेरे बोध देश नहीं ओ नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है। कहिंदे ने ज्ञान दी यात्रा अज्ञान दे बोध तो शुरू होंदी है, रोशनी दी यात्रा अंधेरे दी समझ तो शुरू होंदी है। ये भी ठीक है कि अंधे नू अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, जो जन्म तो अंधा है उनु अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि अंधेरे नु देखण वास्ते भी ते अखां दे रोशनी चाहिदी है, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਧਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ, ਭਟਕਣ, ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਤੜਪ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੜਪ ਉਸੇ, ਪੀੜਾ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਸਕਿਆ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖਿਜਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਸਲ ਆਦਮ ਕੀ, ਇਹ ਸਭ ਤਸਲੀਮ ਲੇਕਿਨ ਆਦਮੀ ਅਬ ਤੱਕ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਧੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਅੰਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਾਗਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਵਿਅਰਥ ਭਟਕਣਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਭਿਅੰਕਰ ਆਵਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੜਪਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹੇਗਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੂਰਖਤਾ ਉਸਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਰਖਤਾ ਉਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦਾ ਇਹੀ, ਪਾਠ ਪਠਨ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣਾ ਭਟਕਣਾ, ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਮ ਦੀ ਆਖਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆਖੋਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਧੇ ਦੂਸਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਕਰਾ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਗਤ ਟਕਰਾਉ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਨ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਏਰਾ, ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੂਰਖਤਾ ਵਿਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅਚੇਤਪਣੇ ਵਿਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਆਵੇਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖ ਦੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਬੋਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਰਮੋਰ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਗਿਆਨ, ਉਹ ਹੈ ਮੂੜਤਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਪਸ਼ੂ, ਜੈਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ ਪਚਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਜਲ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਧਾ ਹੈ ਤੋ 50 ਦੀਵੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਲਦੇ ਰਹਿ, ਵੰਡਦੇ ਰਹਿ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ कोशिश ही उन्हें जगत नू मिले, पर गुरु नानक कहिंदे ने अंधे चानण रखिए, दीवे बले पचास जलदे पंजा दीवे। व्यर्थ ने अंधे दे सामने पतवी मरण नाकारा कर चुकी है, बिल्कुल नाकारा कर चुकी है। कहिंदे ने जिस क्लास विच, जिस स्कूल दी क्लास विच बच्चे बहुत फेल हो जान, रह जान, पास ना हो सकन, स्कूल दे मुंतजिम सोचदे ने टीचर बदलिए, उस्ताद बदलिए, अध्यापक बदलिए, इतने बच्चे फेल हो जांदे ना, शायद ठीक ढंग नाल पढ़ा नहीं रहा। ठीक ढंग नाल कितना भी पढ़ाया जाए, अगर कोई ठीक ढंग नाल पढ़दा ही नहीं तो फिर की होवेगा, फिर की होवेगा। प्रकृति अध्यापक बदलती रही और इक्को ही श्रेणी दी सनातन मत दे चवी अवतार आए। गुरु नानक ने दस रूप धारण किए, धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अंगद देव जी दे रूप च, गुरु अमरदास जी दे रूप च, फिर गुरु रामदास जी दे रूप च, फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रूप च, फिर छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे रूप च, फिर शमा जली गुरु, फिर बालक गुरु धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज दीपक लेके अगे आए, फिर सच दी मशाल लेके अगे आए गुरु तेग बहादुर साहब जी, फिर रोशन जमीर बनके, रोशन चिराग बनके, महा सूरज बनके प्रगट होए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पर मनुखता दी दुनिया च अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। जरदरस्त आए, ईसा आए, मुहम्मद आए, मूसा आए, एक कहण दे च कोई संकोच नहीं, अरब सारा अज भी अंधेरे च, मध्य पूरज अज भी सारा अंधेरे च, अवतारा दी धरती कैलाण वाली ए हिंदुस्तान, ए भारत अगले लाउत्से जैसे महान विचारक दार्शनिक ते संत चीन दी धरती ने पैदा कीते ने, समस्त चीन अज भी अंधेरे च, अज भी अंधेरे च। सूफिया नू जन्म देन वाली ईरान दी धरती, शेख सादी, हाफिज, मौलाना रूम, शमस तवरेज, और इसे तरीके दे नाल हाफिज उमर खयाम, एक तो एक महान दीवा जलिया उस धरती दे च, ईरान अज भी प्रबल अंधकार दे च भटक रहे। हजारां चिराग बेकार हो जाणगे उना मनुखां दे सामने जो अंधे ने, अंधे ने, अंधे ने। ये अंधा पन केड़ी गल दा है? क्या प्रकृति अंधिया नू जन्म देंदी है? नहीं, किधरे हजारां बच्चियां दे चों ऐसा सी देख सकदे हां जो जन्म तो अंधा होवे। प्रकृति ते सुजाकियां नू पैदा कर दी है, प्रकृति ते दोष आयद नहीं कर सकदे, परमात्मा ते ज्ञानियां नू पैदा करदा है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, गऊ दे बछड़े ने जन्म लिया, थोड़ी देर बाद उठदा है और गऊ दे अस्तना दी तरफ जो है लपकदा है। इसनू ज्ञान किसने दे दिता? तेरी खुराक इना अस्तना दे च है, तेरा रिजक अस्तना दे च पे है, ते फिर इसनू चूंगण दा बोध किसने दे दिता? ये ते सब प्रकृति दे रही है। रिजक दी तलाश दा बोध परमात्मा दे रहा है, राजक रहीम दी तलाश दा बोध भी राजक रहीम दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। सबनू ज्ञान दे रहा है, सबनू सूझ दे रहा है। पर ये अंधापन क्यों है? एक ते ओ अंधा है जिसनू कह दईए जिदी अखां विच रोशनी है ही नहीं, एक ओ अंधा है जो अखां खोले ही ना, अखां खोले ही ना। बस इन्हां ही अंधियां दी तादाद ज्यादा है जो दीवे दे जलदे होया अखां खोलदे ही नहीं, खोलदे ही नहीं। और लंबे समय तक अखां बंद करन करके अखां विच वेखण दी ताब भी गवा बैठते हैं, ताब गवा बैठते ने। और फिर जीवन इस तरह जीवदे ने बकौले धन गुरु अर्जुन देव जी, जैसे उल्लू सूरज चढ़िया होया है, चानना है, पर उल्लू दी दुनिया ते अंधेरा है। कि उल्लू दी दुनिया विच अंधेरा है ते उस मनुख नूं की आखांगे जिस दे जीवन विच अंधेरा ही अंधेरा है। कैसा ते नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या है तो कहण विच कोई संकोच नहीं, उल्लू अंधेरे विच जी रहा है, अंधेरे विच जी रहा है। बहुती मनुखता अंधकार विच जी रही है, क्योंकि अंधकार विच जी रही है ते इनूं उल्लू कहण विच की संकोच है। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी विच उल्लू नूं गोगू कहिंदे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना। कोई परमात्मा दी समझ नहीं, अंधेरा ही जिंदगी बन गई है, अंधेरा ही आनंद बन गया, अंधेरा ही सुख बन गया। कितना तरस आएगा उस मनुख दी जिंदगी ते, भटकना ही जिसकी जिंदगी बन जाए, भटकना ही जिसकी चाल बन जाए, टकराव ही जिसका जीवन का आधार बन जाए, ते कल कलेश जिदी जिंदगी का लक्ष्य बन जाए। कितना तरस आएगा, कितनी दया आएगी। इस दया नूं हिरदे विच धारण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तान दी धरती तो चल पेने, औषधियां नाल भरिया होया झोला लेके, अपने हिरदे विच तरह तरह की औषधि रख के। जगत एक रोग है, मनुख एक खुद समस्या है, ते सारियां समस्यावां दा समाधान लेके नौ खंड पृथ्वी दे भरमण लई चल पेने धन गुरु नानक देव जी महाराज। जिथे जिथे औषधि कारगर साबित होई, मनुखता दी जबान चो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਲਾਲ ਮਸਰ ਲਵੋ 2.99 ਦਾ ਬੈਗ, 4 ਪਾਉਂਡ ਵਾਸ਼ਡ ਉਰਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਲਵੋ 4.99 ਦਾ ਬੈਗ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਗਣ ਲਵੋ 99 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: होम मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
6: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at gurdalebaud.com.

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

0: कबीर बरम सुख सागर गरत परत गहल हो अंगुरिया सर्वन सुरते नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत इंगुरिया। तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया एक बचन तरस मई अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहंदे ने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़ क्यों मैं चल नहीं सकदा क्यों नहीं चल सकदे। हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखा और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी नहीं कर सकता। एक कदम चलेगा दो कदम चलेगा तीसरे से डिगेगा लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है बच्चे नु चलना आ गया है प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है चलो एक कदम ही सही चलिया ते है एक कदम चल चलना एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल सत गुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही वाट लखां को दी है चिंता न कर कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटाया है तो गल स्पष्ट हो गई चलन दी जांच आ गई ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना मां नू चिंता हो जाती है पिता नू पीड़ा हो जाती है ले जांदे डॉक्टर कोलों हो गया तीन साल दा हो गया चार साल दा पैर नहीं पुटदा तीन चार वरिया दा हो गया अजेश दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलदा है मम्मा अखर पहले निकलदा है मां मां ये पहला करण लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर दिच इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा अजे बच्चा रह गया है बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है वाहेगुरु कहना नहीं आया। जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसका नां ते निकल आया एदी जबान चो भावे मां ने नहीं आखिया मैं मां हां तेरी लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कटवादी है। चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे परशियन होवे अरबियन होवे चाहे कोई हिंदी बोलता है सिंधी बोलता है पंजाबी बोलता है दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है मां मां मां। और जे जिंदगी दा अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जीवन यात्रा सफल हो गई जगत ते आया सफल हो गया मां ते निकलिया। और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, ये बच्चा बच्चा रह गया, अगे नहीं जा सकिया। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु मैंने बोलन दी जा नहीं आई, तेरे बोल मैं सुन सका मेरे कोल कन भी कोई नहीं, मैं अपनी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंचा सका मेरी जबान नू अजे बोलन दी जाच नहीं आई, तेरे रस्ते ते मैं चल सका ओ पैर में कित्थों लियावा, हैगे ने मनुख कोल पैर, एक क्लब थिएटरां दे मार्ग ते चल देने, बाजार दे मार्ग ते चल देने, संसार दे मार्ग ते चल देने, कदी कदाई कोई कदम जो परमार्थ दे मार्ग ते चलन। सतगुरु कहिंदे मेरे कोल ओ हथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन, हथ हैन मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा, हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सकां अजे मेरे हत्थां दे चो सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चो पकड़ नहीं आई। हुंदा ते है हत्थां दे च कोई ना कोई दामन, हर एक दे हत्थां च हुंदा है, किसे दे हत्थे च दामन है, किसे दे हत्थे च पिता दा दामन है, उस दामन दे आसरे ते चल रहे, किसे दे हत्थे च भरावां दा दामन है, किसे दे हत्थे च पत्नी दा दामन है, पति दा दामन है, और किसे दे हत्थे च पड़ोसियां दा, कदी कदाई कोई कबीर जैसा, रविदास जैसा, रामानंद जैसा कह उठदा है हे प्रभु मेरे हत्थां ते केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मी बोल, सबे साख कुड़ावे दिथे तो पल्ले तैदे लागी, उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने हे प्रभु मेरे हत्थां ते केवल तेरा ही पल्ला है, सफल हो गए हथ तेरा पल्ला मेरे हथे च आ गया, महान हो गए ने हथ तेरा दामन मेरे हथा च आ गया, ते जब तेरा दामन मेरे हथा च आ गया हूं जिथे तू उथे ए दामन मेरे हथा च ए पल्ला मेरे हथा च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का ए महान वाक अध्यात्मक गहराइया नू अपने विच छुपाई बैठा है, जिसनू उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावा जिहड़े तैनू वेख सकदे ने, इस तो ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां दे च परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां किसे दी अखां दे च धन है, टपक रहा है लोभ, किसे दी अखां दे च रूप है, टपक रही है वासना, किसे दी अखां दे च उसकी औलाद है, टपक रही है ममता, ममता ही दसदी पई है अखां दे च तियां पुत्र ने, वाशना ही दसदी पई है अखां दे च रूप रंग है, क्रोध ही दस रहे है ए लाल अखां ही दस रही ने, अखां दे च कोई दुश्मन बैठ गया है और दुश्मन ने अखां लाल कर दितियां, अखां लाल नहीं होईयां दुश्मन ने लाल कर दितियां, दुश्मन ने अपना रंग अधपक दित्ता है। कदी कदाई ओ अखां जिन्हां दे च परमात्मा हुंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठता है उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं आउंदे, वो ऐसी खूबसूरत अख जिहदे चों प्रार्थना झलकदी है, जिहदे च प्रेम झलकदा है, जिसदे चों समदृष्टि झलकदी है, जिसदे चों दया डुल डुल के पैंदी है, उसे दृष्टि नूं आखिया गया अमृतमयी दृष्ट, अमृत दृष्ट, नहीं ते दृष्टि भी जहरीली आउंदी है। जिवें कईयां दे बोल जहरीले आउंदे ने, कईयां दी तकनी भी बड़ी जहरीली आउंदी है। कईयां दे बोल जख्मी कर जांदे ने, कईयां दी तकनी भी आघात पहुंचांदी है, चोट पहुंचांदी है, गिरा के रख देंदी है। तकनी दे जहर भी है, तकनी दे अमृत भी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेओ अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। मेरे कुल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोलां नूं सुन सका। सुन सकदे ने कन परिवार दी आवाज, संसार दी आवाज, किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने, बह रहे ने, हर एक दे कन बह रहे ने, आवाजां सुन रहे ने। ऐसी गल नहीं है, समुचे परिवार दी आवाज सुन सकदे ने, संसार दी आवाज सुन सकदे ने। निरंकार दी ते कदी कदाई कोई कद पुरुष। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं और। ए परिपूर्ण परमात्मा, जितनियां भी आवाजां मेरे कन्ना च पै रहियां ने, पंछियां दियां, पशुआं दियां, मनुखां दियां, बदलां दी गर्जन, पवन दी शांशां, मैनूं तें इंज लगदा है इह तों ही बोल रहे हैं। सब तेरी आवाज, सब तेरा नाद, सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे ने, मेरे कोलो कन भी नहीं, मेरे कोलो जबान भी नहीं, मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावा। किसे दे बोल घर तो बाहर नहीं जांदे, उस दे घर दे ची सिक्का चलदा है, ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलदा। इदी गल घर दे बंदे ते मन सकदे ने, बाहर दे नहीं, इदे बोल बाहर नहीं चलदे। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसके बोल सारे महल्ले सारे कलोनी चल जांदे ने, मन लैंदी है समुची वसनीक, उसके बचना नूं उसके बोलां नूं मन लैंदी है, सुनदी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे च वी पहुंचदे ने, उत्थे वी सुने जांदे ने। कदी कदाई कोई लखां करोड़ां च इक कद खुशकिस्मत इंसान जिस दे बोल निरंकार तक पहुंचते ने और सुनदा है निरंकार, उस दे बोल परमात्मा नूं भी सुनने पैंदे ने, उस दे बोल ईश्वर नूं भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, ओ जबान मैं कित्थों लैवां जिहड़े तेरे तक बोल पहुंचा सके, ओ कन मैं कित्थों लैवां जिहड़े तेरे बोल सुन सके, ओ नेत्र मैं कित्थों लैवां जो तेनू वेख सकन, और हथां दी ओह मैं पकड़ कित्थों लैवां जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कोल ते पैर भी कोई नहीं तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रियां करके है, कर्म इंद्रियां करके है। अगर एक कर्म इंद्रेस दे कोलों खो लईए ते ज्ञान इंद्रेस दे कोलों खो लईए, फिर पत्थर ते मनुख दे च कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर किसे पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकदा, क्योंकि उहदे कोल हथ पैर नहीं ने। पत्थर नहीं बोल सकता, पत्थर सुन नहीं सकदा, पत्थर वेख नहीं सकदा, पत्थर सुंघ नहीं सकदा, पत्थर स्पर्श नहीं कर सकदा, पत्थर सोच नहीं सकदा। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके, तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार दे च इंसान होवेगा, गुरुद्वारे मंदिर दे ते बैठा जिवें पत्थर, जिवें पत्थर नूं कोई बोध नहीं, पत्थर दे च कोई गति नहीं, पत्थर दे च कोई पकड़ नहीं, पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनूं ते एक गाथा याद आई एक सूफी संत हसन दी, वो जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वाज देवे व्याख्या करे तो मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदा सी और पिठ कर लेंदा सी स्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते स्रोतियां ने बर्दाश्त कीता, चलो खैर सुन दे पया, चलो मुंह साडी तरफ नहीं करदा ते ना सही बोल साडे तक पहुंचते ने। लेकिन एक दिन स्रोतियां ने बेनती कीती, फकीर साईं ऐसा क्यों कर दे हो जब सानू सुनाण वास्ते ही तलावत कर दे हो जब सानू सुनाण वास्ते ही उपदेश आवाज दें दे हो फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लें दे हो पिट साड़ी तरफ कर लें दे हो तो हसन मुस्कराया कहिंदा मित्रों मैं थोड़े विच ते दीवार विच कोई फर्क नहीं समझदा थानू सुना दिता दीवार नू सुना दिता एक कोई गल है कोई फर्क नहीं है मेरे कहने नाल दीवार नहीं बदलती मेरे कहने नाल तुसी भी नहीं बदलते मैं बोलदा दीवार नहीं सुनदी मैं बोलदा तुसी भी कित्थे सुनदे ओही कुछ सुनिया जांदा है जो मनिया जांदा जिसनू मनिया ही नहीं तो की सुनिया इस तरह का सुनना तो फिर दीवारा भी सुनदियां धार्मिक दुनिया दे मनुख पत्थर दा पत्थर रह जांदा है जैसे एक मासूम बच्चा कहना ते यही बनेगा पत्थर दी तरह कुछ भी नहीं सुनाई देंदा पेस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा चल भी नहीं सकदा कुछ पकड़ भी नहीं सकदा बोल भी नहीं सकदा कोई भी बोध नहीं इसनों इते गोद इच इंज पे है जिमें एक पत्थर लेकिन पत्थर दे ए उम्मीद नहीं कीती जा सकती कि कदी ये चलेगा कदी ये दामन पकड़ेगा कदी ये लदबले बोलेगा बच्चे ने विश्वासे गोदे च रखे और ममता नाल रखे है आसा जुड़ी हुई है उम्मीद जुड़ी है आज नहीं ते कल चलेगा चलो आज नहीं ते कल बोलेगा आज नहीं ते कल सुनेगा आज नहीं ते कल इसनू असलियत दिखाई देगी सत्संग दे जो सत्संगी बैठे होंदे ने गुरु इसे ढंग नाल बर्दाश्त करदा है चलो कोई गल नहीं अज चलना नहीं आया कल चल लेंगे अज वेखना नहीं आया कल वेख लेंगे अज सुनना नहीं आया कल सुन लेंगे अवतारी पुरुष इन्हां सत्संगियां नूं इस ढंग नाल बर्दाश्त करदे ने और अवतारी पुरुष इस ढंग दी उम्मीद उन्हां नाल जोड़दे ने इस शब्द दे अर्थ कीते ने महान दार्शनिक फिलोसफर वकत दे गुरबाणी दे टीकाकार भाई साहब भाई गुरदास अपने आलमाना ढंग नाल इंज खोलदे ने देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए हे प्रभु तेनु देख सका मेरे को लखा नहीं ने कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए मैं सुन सका मेरे को सरवन नहीं ने और तेरे कन्ना तक मैं बोल पुचा सका मेरे को जबान भी नहीं है तीसरी पंक्ति बड़ी बाकमाल गल कर देने भाई साहब मन में गुरमत गुरमत में ना मन नेचल होए कैसे उन मन लेवलाइए हे गुरु जो तेरी सोचनी है जो तेरी मत है वो मैनू कबूल नहीं है जो मेरी सोचनी है जो मेरी मत है वो तेनू कबूल नहीं तो संबंध किस तरह जुड़े रिश्ता किवें जुड़े एक बच्चे दी सोचनी नाल एक 70 साल का बुढ़ा सहमत हो गया है इसनों बुढ़ा आखण की लोड़ नहीं है भी बच्चा है पर एक 4 साल का बच्चा 81 साल के बुजुर्ग और महान तत्वेता ब्रह्म ज्ञानी संत नाल सहमत हो गया है इसनों 4 साल का बच्चा आखण की लोड़ नहीं है बुजुर्ग है उच्चे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकदा है जो उच्चा है सहमत हो सकदा है जो छोटा है धन गुरु अंगद देव जी ने इस नूं बड़ा सोहना खोलिया नाल इयाने दोस्ती वड्डा रू सोनियो पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना थैओ अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती अपने तो छोटे नाल भी नहीं हो सकती ये दोस्ती पानी दी लकीर होवेगी इधर लकीर कड्डी इधर मिट गई एक 80 साल दे बिरध दा 5 साल दे इस मासूम बच्चे नाल ममता दा संबंध हो सकदा है दादे पोते दा संबंध हो सकदा है मित्रता नहीं है दोस्ती नहीं है दोस्ती ते समतल ते हुंदी है बराबरी दे तल ते हुंदी है विचारां दी सांझ तो क्या 80 साल का बुढ़ा ये 4-5 साल के बच्चे के विचार सहमत होगा? अगर हो गया तो इस बुजुर्ग कहने की लोड़ भी नहीं, ये बच्चा है। क्या ये बच्चा 70-80 साल के इस बुजुर्ग के विचार सोचनी नाल तरजे जिंदगी नाल सहमत होगा? कथा ही नहीं। अगर सहमत हो गया तो बच्चा बच्चा नहीं, ये बुजुर्ग है। दोस्ती समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तल ते हुंदी है। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, तो इसनु सियाणा आखण दी लोड़ की मूड़ है? और एक महान सियाणे नाल, दार्शनिक नाल, ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इसनु मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गया, तल सम हो गया, बराबर हो गया। भाई साहब कहंदे ने, मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे उन मन ले उलाइए, जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी देच परमात्मा है, मेरी सोचनी देच पदार्थ ने। तेरी सोचनी देच राम है, मेरी सोचनी देच काम है। तेरी सोचनी देच निरंकार है, मेरी सोचनी देच अहंकार है। मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े है, मैं नेड़े किस तरह आवा? मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन ले बुलाइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब कहने, अंग अंग टूटे ने, ना मेरे कुल हाथ ने, ना मेरे कुल पैर ने, ना मेरे कुल अखा ने, ना मेरे कुल कन है, ना मेरे कुल रसना है, ना मेरे कुल सोचनी है। हे गुरु, मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, चलना आ गया हे प्रभु, मैनू खुशी हुई है, पर उस बड़ी तेज चलना आया जिसने अज ही चलना सीखा, तो किन्ना क चलेगा? एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने सतगुरु, तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। एक कदम पुटन दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहंदे ने, इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बां पकड़ लेंदा है परमात्मा, बां पकड़ लेंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल, ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिया, तो यह उन महान झलक नू भी वेख सकेगा। थोड़ी जिया झलक की अपने औगुण दिखाई देने लग पैने, एक झलक है। पहला प्रकाश की है, अपनियां कमजोरियां दिखाई दे जाना, बड़े तो बड़े बलवान मनुख, सियाणे मनुख कदी उन्होंने अपने औगुण नहीं दिखाई देते, और कदी उन्होंने अपनी कमजोरियां नु कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन, कदी कोई गुनाहगार नहीं कहिंदा कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई देंदे ने, ना गुनाह नु ओमंदा। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आख्या सी कतल कीता है, गुनाह कीता है। गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा, और गुनाह किधरे रोज दी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है, गुनाह गुनाह नहीं रह जाता, पाप धंधा बन जाता है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ते किरत है, ये ते धंधा है। धंधा ते धंधा है, कई दफा ऐसा होंदा है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर दा अनर्थ धंधा बन जाता है, तो फिर धंधा दिखाई देंदा है, गुनाह नहीं दिखाई देंदा। किरत दिखाई देंदी है, पाप नहीं दिखाई देंदा, जब तीर्थ ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह तंदा दिखाई दे रहे ने, तो ये मनुख हुण गुनाह नु किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा। अगर अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, अपने औगुण दिखाई देन लग पे ने, ये पहली झलक मिली है, दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देन गए। अपना गुनाह दिखाई देन लग पे है, परमात्मा दा पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, परमात्मा दी परम शक्ति दिखाई देन लग पेगी। कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देन लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति दी पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति विपाशक बन दिए, शक्ति दी पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति दी झलक पैंदी है जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी दी झलक पैंदी है। जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती, उनु प्रभु दी शक्ति किथे? जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते, उसनु परमात्मा दा पुन प्रताप किथे? जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा, वह चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा? कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जाता है जिसने अखां दा ऑपरेशन किया है, पट्टी खोली है मरीज दी, ते उनु कहंदे आजता आजता अखां खोल। जैसे वो अखां खोलदा तो डॉक्टर पुछदा कुछ दिखाई देता? कहंदा हां अंधेरा अंधेरा। डार्क रूम दे चाकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने, कहंदा अंधेरा। डॉक्टर कहंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तेनू रोशनी भी दिखाई देवेगी। अंधे नू अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नू कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नू कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहंदे है कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनू अंधेरे दा भी बोध नहीं है, उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखा। जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी, उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे? कहने ने धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, कहने लगे तुसी मैनू बहुत अच्छे और प्यारे लगते हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मांग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे, बहुत चंगा लगे, बगलगीर करन नू जी करे, फिर कोई और करन नू भी जी करता है, उस तो निछावर होण नू भी जी करता है, उस तो सदके होण नू भी जी करता है। सतगुरु कहंदे तैनू कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु दी संगत करदिया करदिया अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे, ए मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मेनू मौका दिता है, मंगो तो ओ अखां दे जिड़ियां तेनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन। इना अखां ने बहुत कुछ देखे है, अजे उस झलक नू नहीं वेख्या जिन्हों वेखण तो बाद कुछ होर वेखण दी तमन्ना रही नहीं जांदी। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जांदा है, परमात्मा सुनाई देंदा है, परमात्मा सोच मंडल दे चा जांदा है, ओ मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जांदा है, बुजुर्ग हो जांदा है। सतगुर ए बुजुर्गी सारियां दी झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਪੀਸੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਵੋ 1.99 ਪਾਉਂਡ, 2 ਕੈਂਟਲੂਪਸ ਲਵੋ 2.99 ਨੂੰ, ਪਾਲਕ 99 ਸੈਂਟਸ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਅਤੇ ਜੰਬੋ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਰਟਸ ਲਵੋ 58 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
3: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
6: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।